0: डब्बों की दूध वाली, डब्बे के दूध जो है, पाउडर वाले दूध जो है अक्सर माएं पिलाती हैं, तो उसमें कुछ दूध जो है वो यानी माँ का दूध जो है वो बच जाता है और बच्चा जो है वो डब्बे से पी लेता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर रोज़ा रखें और बच्चे को दूध भी पिलाती रहें, इंशाल्लाह उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो अपना दूध देती हैं, वो दूसरा कोई दूध नहीं, दूसरा दूध जो है वो कम देती हैं, बच्चा वो पीता नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए जायज़ है कि वो रोज़ा ना रखे, लेकिन बाद में क़ज़ा उस पर फ़र्ज़ है। और जितने रोज़े उसने छोड़े हैं, अगर मुकम्मल रमज़ान के रोज़े छोड़े हैं तो जितनी होंगे 29 या 30 दिन, उतनी मिस्किनों खाना भी खिलाना पड़ेगा। और पैसे देना जायज़ नहीं बल्कि इत्आम है, खाना खिलाना इसमें लाजमी है। कहती हैं और मेरे पिछले साल के भी रोज़े छूट गए, उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब और वॉमिटिंग में गुजरी, तो अब मैं क्या करूं जिससे मैं अपने पिछले साल के रोज़े का हक अदा करूं। अगर पिछले साल में आप बीमार थी और रोज़े नहीं रख सकती थी, तो उस रमज़ान से लेके इस रमज़ान तक आपके पास पूरा साल था, उसमें आप कज़ा कर लेती। अगर पूरे साल में कज़ा नहीं की अपनी बीमारी की वजह से, और ये रमज़ान भी ज़ाहिर आप चंद दिन बाकी हैं शवाल के, अभी तो आप नहीं रख सकते गालिबा, वो क्योंकि बच्चों को दूध भी पिलाते, तो इस रमज़ान में शायद आप नहीं रख सकते जैसे कि आपने कहा है। अलगर्ज पिछले रमज़ान के रोज़े जो हैं वो आप पर कज़ा फ़र्ज़ है, और क्योंकि एक रमज़ान गुजर चुका है और एक उससे पहले आपने कज़ा नहीं की, तो अगले इस यानी इस रमज़ान के बाद जब आप कज़ा करेंगी तो एक मिस्किन को खाना भी खिलाना पड़ेगा। यानी अब सिचुएशन ये है, आपने पिछले रमज़ान के रोज़े भी कज़ा करें, जितने भी आपसे छूटे, पूरा महीना है तो पूरे महीने के रोज़े, अगर पूरा महीना नहीं, जितनी रोज़े आपने छोड़े हैं उनके कज़ा आप पर फ़र्ज़ है, वो आप कज़ा करेंगी, और जितनी रोज़े छूटे उतने दिनों आप मिस्किन को खाना भी खिलाएंगी पिछले रमज़ान को। और इस रमज़ान में अगर आप बच्चे को दूध पिलाने की वजह से रोज़े नहीं रखती तो आप कज़ा भी करेंगी और मिस्किन को खाना भी खिलाएंगी। तो आप खुद दिन गिन लें जितने दिन पिछले साल के आपके हैं, और इस रमज़ान में भी आप देख लें, आप मिस्किनों को खाना खिलाना महीने से पहले भी हो सकता है या रमज़ान से पहले भी कर सकते हैं आप, पिछले साल के और इस साल के भी कोई हर्ज नहीं, और रमज़ान के बाद भी कर सकती हैं। आप उनको खाना खुद घर में पका के दे दें, खुद घर में पका के उनको मुस्किन को पहुंचा दें, लाजमी नहीं है कि आप जो है लाजमी बाहर से कोई पका खाना खरीदें, नहीं, आप घर में चावल मुर्गी पकाने कुछ भी जैसे मुयसर हो, या कुछ सालना रोटी भी आप कर सकती हैं, वो पका के आप 30 या 29 इस महीने के जितनी भी रोज़े हैं उतनी, और पिछले महीने की जितनी भी हैं उतनी, सबको अपने घर में बुला के भी खिला सकती हैं, उनके घर में आप भेज सकती हैं, या बाहर से अगर आप खुद नहीं पका सकती बाहर से लेके भी आप।
1: बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
0: वल्लाहु अअलम
1: वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वला व बाद। फतावा अरकानुल इस्लाम لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله اور اس کتاب میں سے فتاوى الصيام میں سے چند اہم فتاوى کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، میں بغیر عربی ٹیکسٹ پڑھے ہوئے صرف جو ترجمہ ہے اور اس کا جو سوال جواب ہے مختصر وہ بیان کروں گا، اور ترجمہ بھی میں معنی کے اعتبار سے کروں گا تاکہ وقت جو ہے وہ ویسے بھی کم ہے ہمارے پاس، اس لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سوال مختصر سے جواب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، جہاں پر تفصیل ضرورت ہوگی وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے، روزوں کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا فرماتے ہیں، اس سے ہمیں روزوں کے وجوب کی حکمت کی معرفت ہوتی ہے کہ روزوں کی وجوب کی معرفت ہے التقوی والتعبد للہ سبحانہ وتعالی، تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور تقوی سے مراد ہے ترک المحارم، محرمات سے اجتناب، اور جب اطلاق کیا جائے تقوی کا تو اس میں دونوں یہ شامل ہو جاتی ہے، فعل المأمور و ترک المحظور، واجبات جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا۔